0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन रेडियो DS 89.6।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।
2: रेडियो डीएस जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
4: रेडियो डीएस 89.6 गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज, सवाई माधोपुर का पहला कम्युनिटी रेडियो स्टेशन। सड़क पर थोड़ी सी सावधानी आपकी और आपके अपनों की जिंदगी बचा सकती है। याद रखें, हेलमेट पहने, सीट बेल्ट लगाएं, ट्रैफिक सिग्नल का पालन करें, गाड़ी चलाते समय मोबाइल फोन का इस्तेमाल न करें और तेज रफ्तार से बचें। सड़क किसी की जागीर नहीं, सुरक्षित चलना हम सबकी जिम्मेदारी है। यातायात नियम अपनाइए, सुरक्षित घर जाइए। आपकी जिंदगी अनमोल है, इसे जल्दबाजी में जोखिम में ना डालें। रेडियो डीएस एवं डीएस साइंस एकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी की तरफ से जनहित में जारी।

दोस्तों 9:36 का समय हो चुका है। इस वक्त अमृतसर ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो यस गंगापुर सिटी का तड़का पर मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों फिलहाल हमारे स्टूडियो की कॉलिंग लाइन ऑन कर दी गई है। आप हमें कॉल करके जो 10 बजे से आरंभ होने वाला कार्यक्रम हल्लू फरमाइश उसमें भाग लेने के लिए हमें अवश्य कॉल करें।

0: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो डीएस 89.6।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: गुड मॉर्निंग, नमस्कार, सुप्रभातम, सत श्री अकाल दोस्तों। वक्त हो चुका है 10 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 27 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों, वक्त हो चुका है आपके मन पसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर। और दोस्तों, शुरुआत करते हैं कार्यक्रम की। पहली फरमाइश हमारे पास आई है हिंडोन सिटी से।

0: यस
1: हाँ जी सर, नाम क्या है आपका?
0: अजय,
1: कहाँ से बात कर रहे हो? कहाँ से बात कर रहे हो?
0: हेलो,
1: हाँ सर, कहाँ से बात कर रहे हो? कौन
0: मैं तो है ना उत्तम बोल रहा हूँ, इंदौर से। चिलम
1: सा गाना सुनना चाहोगे सर?
0: के सुट्टे पिया करो।
1: ओके सर, सुना रही हूँ आपकी फरमाइश सुनिएगा।
2: गुरु जी, ये चिट्ठी मिली है जी। हाँ चल।
3: मेरे भोले शंकर, मान जा नहीं तो तने ठाके ले जाऊंगी।
4: उई, यो कौन है?
2: ठाके ले जाऊंगी
4: तने के मन है?
5: लो जी, अब थारे सामने पेश है हरियाणा के घने फेमस कलाकार भोला शंकर रागनी ग्रुप।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस। 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं सर।
1: अंकिता।
0: अंकिता जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं अंकिता जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं? रिलीज से
1: तेरे

0: हेलो
1: जी, नाम बताएं सर।
0: हटू वाले का लगाना, वो क्या नाम है, गाड़ी मेरा बंगला में सब कुछ मेरा है।
1: पहले आपका नाम बताएं सर।
0: दिव्यांश, खानपुर बड़ौदा।
1: अच्छा, बिल्कुल लगा रहे हैं सर आपकी रिक्वेस्ट का।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: दोस्तों वक्त हो चुका है 10:18 का। इस वक्त आप मेरे साथ डोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 26 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों आप मेरे साथ सुन रहे हो कार्यक्रम हेलो फरमाइश। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल करें, अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं, हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: आपकी फरमाइश परिएगा ना रेडियो डेस में कॉल करने के लिए।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मैम नमस्ते।
0: नमस्ते, नाम क्या है आपका?
2: सिमरन पटेल।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: सागर मध्य प्रदेश।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: और रात भर।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश परिएगा ना रेडियो डेस में कॉल करने के लिए। बहुत बहुत धन्यवाद।
2: थैंक यू।
0: यू वेलकम। हेलो,

0: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: मेरा नाम नंदिनी पटेल है।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: भोपाल, मध्य प्रदेश।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: मैं लिखूं राजा दिल का वाला सॉन्ग सुनूंगी।
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
1: ओके, थैंक यू मैम।
0: यू वेलकम।

0: हेलो।
1: हाँ सर नमस्ते।
0: हाँ जी योगेश जांगड़े भी मेहतरा छत्तीसगढ़ से।
1: सर कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: दिन है इतवार का मजा लीजिए, थोड़ा इंतजार का मजा लीजिए, ये वाला सुनवा देंगे।
1: ओके सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना। तो डीडीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: धन्यवाद।
1: यू वेलकम सर।

0: शहजाद खान पुराने इनाम।
1: गाना बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
0: तना जोर गरम।
1: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश पर ये बेहतरीन सा गाना रेडियो डीएस में।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हाँ जी,
3: नमस्कार
2: जी। हमारे जम्मू से केशव शर्मा और सुषमा रानी, साथ में हमारे दोस्त हैं राजस्थान से पूर्ण वर्मा जी।
3: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगी?
2: तो मैडम यार गाना सुना दी, मुझे साजन फिल्म है ना पुरानी, रेशम की डोरी।
3: हाँ जी सर।
2: तो मैडम आप कहाँ से? बहुत देर दिनों के बाद आपसे बात हो रही है।
3: सर मैं छुट्टी पे थी, कुछ दिन तबीयत खराब थी इसलिए, और फिर सर लेट इन कॉलिंग, मैं थोड़ा लेट आती हूँ ना इसलिए तबीयत खराब थी, थोड़ा लेट आने लग गई थी।
2: कोई बात नहीं, चलो भगवान से हम प्रार्थना करते हैं आप बहुत जल्दी तंदुरुस्त हो जाएं, हमारे प्रोग्रामों को अच्छा अच्छा पेश करते हैं आप, इसलिए आपको बहुत बहुत मुबारकबाद।
3: धन्यवाद सर। हाँ जी सर,
2: थैंक यू।

0: सारेगामा कारवां डिजिटल ऑडियो प्लेयर। इस तोहफे में है 5000
1: रेडियो डीएस।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
3: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
4: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
5: 89.6 पे
4: रेडियो डीएस।
6: 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
7: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
7: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त

0: का सरताज है।
1: हेलो
2: हेलो मैम, नमस्ते
1: सर। नमस्ते सर, नाम क्या है आपका?
2: उमा शंकर पटेल बोल रहा हूँ, पिपरिया सागर मध्य प्रदेश से।
1: हाँ जी सर, कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: जो भी कसमें खाई थी हमने, वादा किया था मिलके, क्या तुम्हें याद है?
1: कि सर सर, मौसम कैसा है अपना मध्य प्रदेश का?
2: बढ़िया बढ़िया है मैम, बढ़िया है। बस
1: बारिश हो रही है?
2: नहीं
1: हो रही क्या? ठंडा तो होगा वैसे?
2: जी जी, धूप निकली है, धूप छांव है।
1: नहीं वैसे ठंडा भी होगा, थोड़ा बहुत चिल रहता होगा मौसम।
2: जी जी जी जी।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
2: जी।

0: हेलो।
1: हाँ नमस्ते।
0: हाँ नमस्ते सर, नाम बताएं आपका। बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से?
1: हाँ सर, रविंद्र जैन की आवाज में।
0: कौन सा गाना है?
1: चारों धामों से निराला।
0: बिल्कुल सुना रहे हैं सर, आपकी फरमाइश करेगा।

0: हेलो
1: हेलो मैम नमस्ते
2: जी, नाम बताएं सर आपका। कहाँ से बात कर रहे हैं मीना जी?
3: नमस्ते को मम्मी।
2: बताएं सर कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: ऊपर और कर्नाटक बाहुबली।
2: जी बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपको, आपकी फरमाइश करेगा।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग,
3: 89.6 पे
2: रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का में आपका रेडियो।

0: जो मनोरंजन का सरताज है।
1: हेलो।
2: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
1: अरविंद।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: करौली से।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर?
1: कब्जे।
2: ओके सर, सुना रहे हैं, आपकी फरमाइश। परिगान

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है।
3: हेलो
4: जी, नाम बताएं सर।
3: अनुज गुर्जर।
4: कहाँ से बात कर रहे हैं अनुज जी?
3: गंगापुर सिटी।
4: बताएं सर, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं?
3: बरेटा।
4: बिल्कुल सुना रहे हैं सर आपकी फरमाइश का बेहतरीन सा गाना रेडियो DS में कॉल किया आपने, धन्यवाद।

0: हेलो
1: हेलो
0: जी, नाम बताएं।
1: फाया शर्मा।
0: शर्मा जी कहाँ से बात कर रहे हैं?
1: गंगापुर सिटी।
0: बताएं शर्मा जी, कौन सा गाना सुनना चाहते हैं रेडियो डीएस से? काले कूद पड़े हो मेला में, साइकिल पंचर कर ले आयो। बिल्कुल सुना रहे हैं शर्मा जी आपको, आपकी फिल्म है।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो

0: का सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। द फैकल्टी ऑफ डीएस इज वेरी एक्सपीरियंस्ड एंड सपोर्टिव एंड स्टडी मटेरियल इज डिजाइंड स्ट्रेट टू द पॉइंट इन क्वालिटी। रेगुलर डाउट क्लासेस एनहांसेस आवर कांसेप्ट बिल्डिंग फॉर बेटर फ्यूचर एंड सिलेक्शन इन हायर एग्जाम्स लाइक जेईई एंड नीट। लेट्स स्टडी विद अस फॉर बेटर करियर बिल्डिंग।
3: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल गंगापुर सिटी।
4: हम आपके बच्चे को एक मजबूत शैक्षणिक वातावरण के साथ अनुशासित और नैतिक मूल्यों का ज्ञान उपलब्ध करवाते हैं, जिससे आपके बच्चे का समग्र विकास हो सके।
5: बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल
4: आपके बच्चे को देता है स्मार्ट और गुणवत्त शैक्षणिक व्यवस्था, प्रशिक्षित अध्यापकों द्वारा अध्यापन, सभी विषयों की सुसज्जित अलग अलग प्रयोगशालाएं जैसे कंप्यूटर लैब, साइंस लैब, विद्यार्थी के सर्वांगीण विकास के लिए नियमित अतिरिक्त गतिविधियां जैसे संगीत, नृत्य, चित्रकला, शारीरिक विकास के लिए विद्यालय के अंदर खेल, आवागमन हेतु वाहन की समुचित व्यवस्था, सकुशल और सुरक्षित वातावरण, पुस्तकीय ज्ञान के साथ साथ व्यावहारिक ज्ञान पर विशेष ध्यान।
6: अपने बच्चे के बेहतर भविष्य के लिए आज ही एडमिशन करवाएं बचपन पब्लिक सेकेंडरी स्कूल।
7: डीएस कर रहा है आपके बालकों का उज्जवल भविष्य का निर्माण। डॉक्टर या इंजीनियर, आईएएस या आरएएस, राजकीय श्रेष्ठ पदों की तैयारी और लगातार सिलेक्शन। आज ही एडमिशन कराएं। अधिक जानकारी के लिए संपर्क करें 9828997500। प्रवेश प्रक्रिया आरंभ, सीमित सीटें, पहले आए पहले पाए।
8: हेलो।
9: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
8: गुलशन।
9: कहाँ से बात कर रहे हो?
8: गंगापुर सिटी। कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
9: हाँ,
8: कर दे मेरी मोटो राखो राची राची रे।
9: ओके मैम, सुना।

सुबह तावली चार सात बज लिए, फिर ऑटो भी नहीं मिलने का।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हर बीट में है शहर का कमाल डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: क्या है आपका?
1: श्रवण।
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: नारायणपुर कटवाड़ा।
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
1: बलम में नस नस के।
0: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
4: अखिलेश जारडा।
3: कहाँ से बात कर रहे हो सर?
4: मादलगांव।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: आके उसकी काली बनो जानू।
3: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।
5: पतली पतली

0: इट्स वैम्पायर।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
3: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
4: हेलो,
5: नमस्ते।
4: हाँ जी नमस्ते, नाम क्या है आपका?
5: कृष्णा राजमीना।
4: कहाँ से बात कर रहे हो?
5: हनुमान नगर।
4: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
5: ओ पड़ते बाहुबली।
4: ओके, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

हेलो। हाँ जी मैम, कैसे? ब्रिजिया सैनी, कहाँ से बात कर रहे हो? जमुनापुर से। कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कुछ कुछ होता है। कोशिश

0: हेलो, नमस्ते। नाम क्या है आपका?
1: सना,
0: कहाँ से बात कर रहे हो?
1: गंगापुर
0: कौन सा गाना सुनना चाहोगे? चम्मल घाटी।
1: सिटी। हाँ
0: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

नाम क्या है सर आपका? कौन सा गाना सुनना चाहोगे सर? ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
2: Hello.
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: मैं
3: कहाँ से बात कर रहे हो? कौन से गाना सुनना चाहोगे?
2: बड़ी बात
3: ओके तो सुना आपकी फरमाइश पड़ेगा ना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।
3: हेलो
4: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका? कहाँ से बात कर रहे हो? कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
4: मीना गीत
3: नहीं चलते, कोई और बताइए। कौन सा? ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश।

0: हेलो
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: बीएस राज ठाकुर।
1: कहाँ से बात कर रहे?
0: एमपी से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: बावला में हूँ, बावला।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर।

0: सब्सक्राइब नाउ एंड
1: 89.6 पे रेडियो डीएस
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: तुम सा कोई दूसरा इस जमी पे हुआ तो रब से शिकायत होगी, तुम्हारी तरफ रुख किसी गैर का हुआ तो कयामत से पहले।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: पूनम, मैं आज तक नहीं समझ पाया तुम मेरी छोटी से छोटी बात को कैसे जान लेती। तुमने मेरी सर्दी को कैसे पहचाना?
1: जब सर्दी होती है तो हमेशा यूं करते हो।
0: कैसे? एक बार फिर करना।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। में आपका रेडियो दोस्त

0: मनोरंजन का सरताज है।
1: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज आस्था बंसल, स्टडिंग इन 9th क्लास। बिफोर कमिंग इन डीएस आई डिडंट नो अबाउट फाउंडेशन। नाउ आई नो दैट व्हाट इज रियल फाउंडेशन। The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.

गुड आफ्टरनून दोस्तों, वक्त हो चुका है, एक बज चुका है। इस वक्त आप मेरे साथ टून कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों, गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 28 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों, अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी साथ सुने थे कार्यक्रम हेलो फरमाइश। अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम नए तराने 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: के भरतपुर जिले से 48 किलोमीटर दूर स्थित बयाना तहसील, ये जो आप मेरे पीछे देख रहे हैं ये है बाणासुर का किला, जिसे बयाना का किला कहा जाता है। बयाना तहसील से करीबन 12 किलोमीटर दूर है। ये फोर्ट जो है वो ना केवल सल्तनत काल, मुगल काल या गुप्त काल के जाना जाता है, बल्कि इस किले का इतिहास करीब 2000 साल से भी अधिक समय से जुड़ा हुआ है। जी हाँ साथियों, बाणासुर के इस किले का इतिहास जो है वो भगवान श्री कृष्ण से जुड़ा हुआ है। कहते हैं कि आज से करीबन 2000 साल पहले भगवान श्री कृष्ण ने बाणासुर का वध इसी फोर्ट में किया। तो यह स्थान जो है वो अत्यंत पवित्र है। तो अपने इस फोर्ट के अंदर जाएंगे, ये फोर्ट के अंदर प्रवेश करने का मुख्य गेट आपको सामने नजर आ रहा होगा। यहाँ लोग जा रहे हैं, आज मकर संक्रांति का पर्व है, लेकिन फोर्ट के अंदर प्रवेश करने का मुख्य द्वार जो है वो दूसरी तरफ है पहाड़ी। तो अपने उस तरफ से एंटर करेंगे और इस तरफ से वापिस आएंगे। पूरे फोर्ट को अपने पार्ट बाई पार्ट देखेंगे, तो वीडियो लंबा होगा तो अपने इसको दो पार्ट में बनाएंगे, तो पूरा वीडियो आप जरूर देखें, बहुत मजा आने वाला है। चलिए चलते हैं।

गेट था, और यहाँ बिल्कुल आगे एक टेम्पल बना हुआ है उसी समय का। तो अब अपने इसी गेट से होते हुए अंदर की तरफ चलेंगे। ये चारों ओर पूरी लंबी चौड़ी दीवार है, वो इसी दीवार में उस तरफ भी प्रवेश करने के कुछ खूफिया रास्ते बने हुए। तो आइए अब अपने इस मुख्य द्वार से होते हुए अंदर की ओर चलेंगे। मुख्य गेट जो है ना वो तो बंद है, तो इसके अंदर से निकलना पड़ेगा क्योंकि इसके ताला लगा हुआ है। अंदर जो है वो आए इस तरह आए क्योंकि टूटा हुआ है, तो ये साथी आ रहे हैं हमारे इस तरह से। और गेट के अंदर का व्यू आप देखिए साथियों, ये मुख्य द्वार है उस समय। दीवार जो है वो पूरी चारों ओर बनी हुई है, और ये सामने का ये है मुख्य फोर्ट, बिल्कुल पहाड़ी के ऊपर है। तो पहले अपने नीचे का देखेंगे और फिर चलेंगे ऊपर की ओर। पूरी चौड़ी दीवार बनी हुई है, आप देखेंगे तो इसमें करीबन 3 घोड़े सरपट दौड़ सकते हैं। और जैसे ही आप फोर्ट के मुख्य गेट से अंदर की ओर आएंगे, तो यहाँ ये जो फॉर्मेशन आप देख रहे हैं ये बनी हुई है उस समय की जेल, तो ये आपको अंदर से दिखाएंगे। और पूरे फोर्ट के ऊपर आप देखेंगे ना, तो चारों ओर जो है वो ऊपर की तरफ चौड़ी दीवार बनाई हुई है। हालांकि आपको दूर का सीन दिखाई नहीं देगा यहाँ से, क्योंकि कोहरा काफ़ी ज़्यादा आया हुआ है। और इस तरफ की दीवार आप देख सकते हैं ये कितनी चौड़ी है, और जगह जगह इस तरह के गुंबद बनाए गए हैं ताकि उस समय जो है वो सुरक्षा की दृष्टि से। आप देख रहे हैं तो इस पूरी दीवार के अंदर भी गन पॉइंट्स बने हुए हैं, ये देख सकते हैं आप, बिल्कुल महीन गन पॉइंट्स। ये फोर्ट में जैसे ही अपने प्रवेश करेंगे, तो हालांकि इनका तो कहना है कि ये जेल है, लेकिन अब तो ये खुला है, हो सकता है कि उस समय इसको बंद किया हो, नीचे तरफ जाने कुछ रास्ते हों, लेकिन अब ये अंदर जाने का कोई रास्ता नहीं है, बंद है। चारों ओर चौड़ी ऊंची दीवार है, तो अपने आगे की ओर चलते हैं।

रेत से अट चुका है, तो यहाँ नीचे का तो बंद ही हो गया बिल्कुल, लेकिन उस समय ये पूरा कुआं था। ऐसे कुएं आपको बहुत अंदर की ओर भी देखने को मिले, कुछ बावड़ियां जो हैं वो भी बनी हुई, यानी पानी का संरक्षण उस समय यहाँ का महत्वपूर्ण कदम था। तो मुख्य गेट से जब आप अंदर की ओर आएंगे तो करीबन 1 किलोमीटर आपको पैदल चलना होगा, तब आप पहुंचेंगे मुख्य गुंबदों की तरफ जहां से फोर्ट शुरू होता है। हालांकि पूरा फोर्ट जो है वो करीबन 1000 फीट ऊंचाई के ऊपर जो पहाड़ी है उसके ऊपर बना हुआ है, लेकिन ये फोर्ट में एंटर करने के मुख्य रास्ता था, ये कुआं जो है ना पूरा टूट चुका।

इस बयाना के फोर्ट में सन 1041 ईस्वी में यहाँ पर आए। साथियों, अब आप देख रहे हैं, ये है फोर्ट का मुख्य गेट। आप देख सकते हैं कि ये कितना शानदार बना हुआ है उसी समय का। ये इंटर करने का मुख्य प्रवेश द्वार है। अब अपने आगे हैं दुर्ग के मुख्य प्रवेश द्वार की। जी हाँ साथियों, ये फोर्ट में प्रवेश करने का मुख्य द्वार है। हालांकि पूरा फोर्ट जो है वो पहाड़ी के ऊपर है। अपने जब तक ऊपर जाएंगे तो करीबन 4 से 5 मुख्य गेट अपने को पार करने पड़ेंगे। फोर्ट को बनवाने की अगर बात करें तो यहाँ करौली के यदुवंशी राजा विजयपाल ने 11वीं सदी में इस फोर्ट को बनाया था। हालांकि उससे पहले सल्तनत काल में, मुगल काल में और त्रेता युग से इसकी कहानी जुड़ी हुई है। अनेक इमारतें इस फोर्ट में बनी हुई, लेकिन मुख्य रूप से इस फोर्ट को बनाने का श्रेय विजयपाल को दिया जाता है। तो ये फोर्ट में एंटर करने का मुख्य द्वार है। आगे की तरफ बावड़ी बनी हुई है, बहुत सारे महल हैं। तो आप पूरे वीडियो में हमारे साथ जुड़े रहिए, आपको बहुत मजा आने वाला है।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस।

0: बीच में है शहर का कमाल DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: तेनु क्या नाम है हैगा यार, यकीन रख मेरे टेंशन ना, मैं सब कुछ ठीक कर दूंगा।
3: हाँ जी
2: चल कर दा मैं।
3: माही है?
2: नहीं कोई हो रहा।
3: फिर कौन?
2: कोई हो रहा।
3: ब्याह दा की सी ना तेरा?
2: ब्याह दा कदे सोचा ही नहीं। करा लांगे ब्याह भी, बथेरियां उमरां पईयां।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

दोस्तों वक्त हो चुका है तो बच चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सास सुने थे कार्यक्रम नहे तराने, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम भूली विसरी आदे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS।

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो डीएस, 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: हेलो दोस्तों, आप सुन रहे 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त

0: चैनल का जो मनोरंजन का सरताज है।
1: दोस्तों वक्त हो चुका है 3:00 इस वक्त आप मेरे साथ टोन का 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का, मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजी पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 32 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरी सांस सुने थे कार्यक्रम भूली विसरी यादें, अब थोड़ी ही देर में आप सुनोगे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
1: शहर का नया मैजिक रेडियो DS 89.6
3: गंगापुर सिटी की धरतल।
4: Hello friends, my name is Astha Bansal, studying in 9th class. Before coming in DS, I didn't know about foundation. Now I know that what is real foundation. The faculty of DS is very experienced and supportive, and study material is designed straight to the point in quality. Regular doubt classes enhances our concept building for better future and selection in higher exams like JEE and NEET. Let's study with us for better career building.
5: गुड इवनिंग दोस्तों वक्त हो चुका है 4 बज चुके हैं। इस वक्त आप मेरे साथ टोन कर 89.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे फलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 33 डिग्री सेल्सियस। दोस्तों अभी आपने थोड़ी देर पहले मेरे साथ सुने थे कार्यक्रम बैक टू बैक गाने का। थोड़ी ही देर में आप सुनोगे आपका मनपसंद कार्यक्रम राजस्थानी 89.6 रेडियो डीएस पर। दोस्तों हमारी स्टूडियो कॉलिंग लाइन चालू है, आप कॉल कर और अपनी फरमाइशों को दर्ज कराएं। हम आपकी फरमाइशों को जल्दी ही पूरा करेंगे 89.6 रेडियो डीएस पर।

0: हर बीट में है शहर का कमाल, DS 89.6 शहर की धुन।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS
0: शहर का नया मैजिक, रेडियो DS 89.6।
2: दोस्तों आप सुन रहे हैं 89.6 रेडियो DS गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपका रेडियो दोस्त ऋषि मीना। दोस्तों हमारे स्टूडियो के नंबर आप लिख लें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों नंबर एक बार पुनः लिखें, 6 3 7 8 0 2 4 4 7 5। दोस्तों इस कार्यक्रम में शामिल होने के लिए आप हमें तुरंत कॉल कीजिए।
0: शहर

यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, DS89.6 शहर की धुन।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग, 89.6 पे रेडियो DS, 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो DS 89.6।

0: दोस्तों वक्त हो चुका है 4:29 का। इस वक्त आप मेरे साथ टून करें 99.6 रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का। मैं आपकी रेडियो दोस्त आरजे पलक। दोस्तों गंगापुर सिटी का वर्तमान टेम्परेचर है 34 डिग्री सेल्सियस। और दोस्तों वक्त हो चुका है आपके मनपसंद कार्यक्रम हेलो फरमाइश 89.6 रेडियो डीएस पर।
1: हेलो,
2: हाँ जी, आप रेडियो की आवाज कम करो पहले तो।
1: हेलो,
2: हाँ जी
1: मैम, वो एक सॉन्ग का, कौन सा वाला सॉन्ग है भाई? बोलिए सॉन्ग का नाम बताइए।
2: नाम क्या है आपका?
1: सॉन्ग का नाम बोलने दो।
2: नाम क्या है आपका?
3: वो साथी आ जा रहे।
1: वो साथी आ जा रहे।
2: नाम क्या है आपका?
1: मैम विजय।
2: कहाँ से बात कर रहे हो?
4: गंगापुर सिटी एयरपोर्ट ऑफिस माधोपुर रोड।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: साथी आ जा रहे।
2: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। गाना रेडियो डीएस में कॉल कर लीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS।
2: जय भवानी।
3: जय भवानी मामा जी, नाम क्या है आपका?
2: विमल, ओनली विमल, मऊ कला, गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: तौबा ये मतवाली चाल, झुक जाए फूलों की डाल।
3: ओके मामा जी, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश, करिए गाना।
2: धन्यवाद दीदी। कहाँ भाग गई थी आप राखी?
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS। 89.6 रेडियो DS, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: नमस्कार।
1: नमस्ते, तो नाम क्या है आपका?
0: मैं सादर बोल रहा हूँ, दशहरे मैदान से।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: गाना है कल मेरी तरह मुझको सलाम आप करेंगे।
1: आपकी फरमाइश पर ये गाना रेडियो डीएस में कॉल करने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।
0: आपका भी धन्यवाद।

0: हेलो
1: नमस्ते।
0: नमस्कार जी। नमस्कार
1: सर, नाम क्या है आपका?
0: नाम तो सर बाबू खान है।
1: कहाँ से बात कर रहे हो?
0: गंगापुर सिटी।
1: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
0: तेरे तो बिछड़ी दिल का कह दो तो हटा दूंगा।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश। करिएगा ना

0: हेलो।
1: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
0: बोल
1: कहाँ से बात कर रहे हैं? कौन सा गाना सुनना चाहोगे? कौन सा?
0: संभल के टाकू।
1: ओके सर, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश पर ये गाना।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल, डीएस 89.6 शहर की धुन।
2: हेलो
3: हेलो जी, नमस्ते
2: मैम। नमस्ते, नाम क्या है आपका?
3: सुनहरी।
2: कहाँ से बात कर रहे हो सुनहरी जी?
3: पावनवास।
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
3: नहीं छोड़ दी।
2: वो गाना कौन सा है?
3: तारे भाभी हो।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी।
3: नहीं छोड़ दी।
2: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करूँगा।

0: 89.6 पे रेडियो डीएस
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएस एफएम पे।
0: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस।
2: हाँ जी, नाम क्या
3: है?
2: कहाँ से बात कर रहे
3: हो?
2: कौन सा गाना सुनना चाहोगी? कौन सा?

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6।
2: हेलो,
3: हाँ जी, नाम क्या है आपका?
2: माहिनूर।
3: कहाँ से बात कर रहे हो?
2: गंगापुर सिटी।
3: कौन सा गाना सुनना चाहोगे?
2: घूमरो सामरंग घूमरो।
3: ओके मैम, सुना रहे हैं आपकी फरमाइश करिएगा।

0: मुझे आने में ज़्यादा देर हो गई।
1: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
2: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग। 89.6 पे रेडियो DS।

0: इस वक्त मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो DS89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का और सवाई माधोपुर का पहला स्टेशन गंगापुर सिटी का मनोरंजन का सरताज आपके अपने रेडियो दोस्त ऋषि मीना के साथ। दोस्तों आप सभी हमसे जुड़े रहने के लिए धन्यवाद। इस कार्यक्रम के प्रायोजक है DS साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
1: हर बीट में है शहर का कमाल DS89.6 शहर की धुन।

0: 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर। 89.6 रेडियो डीएस, जहां हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
1: आप सुन रहे इस वक्त रेडियो डीएस 89.6 पर गंगापुर सिटी का तड़का, मनोरंजन का सरताज अपने आपके ऋषि मीना के साथ। बने रहे बेहतरीन मनोरंजन और वर्तमान जानकारियों, सेहत भरी बातें और जानकारी के लिए। इस कार्यक्रम के प्रायोजक हैं डीएस साइंस अकेडमी नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर। परिणाम और विश्वास का दूसरा नाम।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 डीएसएफएम
3: चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें।

0: अगर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर करें।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो डीएस 89.6 रेडियो डीएस, जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।

0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
1: यहाँ हर बीट में है सिटी का स्वैग 89.6 पे रेडियो DS 89.6 रेडियो DS जहाँ हर फ्रीक्वेंसी पर है गंगापुर सिटी का असली फ्लेवर।
2: DS साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
3: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
2: DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
3: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव, क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
2: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी सवाई माधोपुर।
0: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DSFM पे।
4: हर बीट में है शहर का कमाल DS 89.6।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूती।

0: क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: सुनते रहिए दिल से दिल तक 89.6 DS FM।

0: दोस्तों अभी आपने सुना हेलो फरमाइश कार्यक्रम, थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मन भसन फेवरेट कार्यक्रम भजन संध्या। कीजिए थोड़ा सा इंतजार।
1: DS साइंस अकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। DS साइंस अकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

संत कबीरदास जी महाराज ने प्रेम की परिभाषा बताते हुए कहा, जंगल में एक हिरण और हिरणी का जोड़ा रहता था। एक दिन शिकारी उस जंगल में आया और शिकार पकड़ने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करने के लिए जंगल में एक फंदा लगाया। इधर हिरण और हिरणी जंगल में हंसते खेलते विचरण करते हुए उस फंदे के पास आ पहुंचे और हिरण का पांव उस फंदे में फंस गया। जैसे ही उस हिरण का पांव उस फंदे में फंसा, वो चिल्लाने लगा, रोने लगा। उसकी चिल्लाने की आवाज सुनते ही सारे जीव जंतु और जानवर जंगल में भाग गए, परंतु प्रेम के धागों से बंधी उसकी हिरणी उसको छोड़कर नहीं गई। उसके पास खड़ी होकर भगवान से करुणा पुकार करने लगी, भगवान के आगे रोने लगी, मारे पिया जीरा प्राण बचा, आ हिरणी हरिसु अर्ज करे।

कहे मिरगलो सुन ए मिरगली, तू धीरज मत खोए, तू तो कूद जंगल में रिड़ जा, हरी करे सो होए। हे प्यारी, जो भगवान ने लिखा है वही होगा, तू मेरे लिए दुखी मत हो, कम से कम तू अपने प्राणों को बचाकर भाग जा। वे शिकारी अपने शिकार को ढूंढता हुआ आता ही होगा। वे हिरण बार बार हिरणी से निवेदन करने लगा, तू मेरे साथ अपने प्राणों को मत गवा प्यारी। पर वे हिरणी एक नहीं मानी और कहा कि हे प्रियवर, शिवाय तुम्हारे मेरा इस जंगल में क्या है। और भगवान के आगे रोते रोते पुकार करने लगी, हे प्रभु, तीन पाव पर खड़ी मिर्गली हरिसु हेत लगाए, और हरी रो सिंहासन डोल्यो बावरिया ने विष खाए। हिरणी की आंखों में आंसू देकर और अपने प्रीतम के लिए अपार प्रेम देकर भगवान को बड़ी दया आई और उसकी पुकार सुनी, और धीरे धीरे हिरण के फंदे खुलने लगे। तब कबीरदास जी महाराज ने कहा,

0: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
2: गंगापुर सिटी के हर कोने में अपना आवाज लेकर आ रहा है गंगापुर सिटी का पहला रेडियो स्टेशन, रेडियो डीएस 89.6।

0: दोस्तों 7:59 का समय हो चुका है, यानी 7 बजने वाले हैं। अभी आपने सुना मेरे साथ भजन संध्या कार्यक्रम। दोस्तों फिलहाल आप मेरे साथ ट्यून इन कर रहे हैं रेडियो डीएस गंगापुर सिटी का तड़का पर। मैं आपका रेडियो दोस्त रेसी मीना।
1: डीएस साइंस एकेडमी, क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
2: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
1: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
2: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
1: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए, अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।
0: और दोस्तों 8 बज चुके हैं, थोड़ी देर में लेकर हाजिर रहूंगा आपका मनपसंद कार्यक्रम फिल्म संगीत।

0: डीएस साइंस एकेडमी। क्या आप अपने बच्चे के उज्जवल भविष्य के लिए एक बेहतर स्कूल की तलाश में हैं?
1: तो अब तलाश हुई खत्म। गंगापुर सिटी में शिक्षा, अनुशासन और सफलता का नया नाम है
0: डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, जहां विद्यार्थियों को मिलती है गुणवत्तापूर्ण शिक्षा के साथ साथ बेहतर मार्गदर्शन और अपने लक्ष्य को हासिल करने का आत्मविश्वास।
1: अनुभवी एवं समर्पित शिक्षकों के मार्गदर्शन में बच्चों की पढ़ाई पर विशेष ध्यान, नियमित अध्ययन, परीक्षा की बेहतर तैयारी और उज्जवल भविष्य की मजबूत नींव। क्योंकि हमारा लक्ष्य सिर्फ अच्छे अंक नहीं, बल्कि हर विद्यार्थी को उसके सपनों की मंजिल तक पहुंचाना है।
0: पढ़ाई ऐसी जो भविष्य बनाए। अपने बच्चे के सुनहरे भविष्य के लिए आज ही संपर्क करें। डीएस साइंस एकेडमी, नसिया कॉलोनी, गंगापुर सिटी, सवाई माधोपुर।

और दोस्तों रात्रि के 11 बज चुके हैं। आज की सभा का यही समापन करते हैं। प्रातः 5:55 पर फिर मिलते हैं। तब तक के लिए आपके ऋषि भाई को दीजिए इजाज़त। नमस्कार, जय हिंद, जय भारत, शुभ रात्रि।

लौट बहारे झूलों की राहों में कतारे फूलों की यहाँ अगर हम डट जाए।